मैं कोनिया सो थजा है तिनिए कानू बोला जा है बिचो गानो वो सुते पाओ मैं चो गानो वो खे ते पाओ कबे इमा सो किलो गाए वे विखोली मा वो कालो गाए लो कबे मालू के लो गाए वे ने खोली मा देते लो गाए लो बिलो उठते वो क्या ले ओ सका चिते वो चे वाले बिले मुका वो लिमा सिवी हो।